पैसे दे मुझे, हमें जाना है। दिया दिया, चलो चलो, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी, चाय पीबो जी, अच्छा चाय पीबो जी।

0: ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੇਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਰਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਬਾਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਲੇਡੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਲੇਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੌਣ ਹੋਤਾ ਹੈ?
1: ਨਹੀਂ,
0: ਸ਼ਲੇਡਾ ਵੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਓਂ ਸੇ ਆਤੇ ਨਾ ਉਨਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਕਭੀ ਕਭੀ ਦਿਖਤਾ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਤੋ ਜਬ ਵੀ ਦੇਖਤਾ ਨਾ ਵੋ ਆਪਕੋ ਬਸ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਕਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਨਿਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੂੰ, ਤੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
0: ਜੀ। ਅਭੀ ਆਪ ਹੋ, ਕਬ ਉਠਾ ਦੇਂਗੇ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਕੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਵਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕੀ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੁਝੇ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਥੇ।
1: देखिए, मैं यहाँ पे आया था 2008 में
0: जी,
1: मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से
0: जी।
1: उसके बाद फिर 2011 में मुझे जॉब मिला एज अ साइंटिस्ट व्हेन जब मैं ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में मूव किया
0: जी।
1: उसके बाद फिर मैं काफ़ी साल मैंने काम किया, 4-5 साल काम किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद मैं लोगों की और मदद करना चाहता हूँ, तो मुझे शौक भी था थोड़ा लॉ सीखने का और जानने का, तो वैसे ही शुरुआत हुई उसी तरीके से
0: जी। एक सवाल आपको मैं देता हूँ
1: जी,
0: वो अगर आप इंडिया में हो ना, तो अगर चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, वहाँ पर कहते हैं ना भाई, 2-3 बंदे कह लो, कुछ भी हो लो, उनसे बचकर रहो, उनकी दोस्ती भी माड़ी है और दुश्मनी भी माड़ी है, उसमें एक पुलिस वाला, एक वकील और एक घोड़ा, मतलब क्या जी, तीनों लाते ही मारते हैं।
1: चलिए, अच्छा हुआ हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, अभी ब्रिस्बेन में, तो
0: जी
1: दोस्ती अच्छी है।
0: अच्छा, 3 वर्ड होते हैं, लॉयर, सोलिस्टर, ब्रिस्टर, कोई फर्क है इसमें?
1: है। देखिए, जो लॉयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वींसलैंड में एडमिट होता है, उसके बाद आपको क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन होता है, तब आप सॉलिसिटर बनते हो। तो इट्स अ वेरी फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लॉयर एंड अ सॉलिसिटर।
0: इनकी पावर में कोई
1: पावर में होता है? थोड़े से डॉक्यूमेंट्स विटनेसिंग करने के लिए और कई जगहों पे जाने के लिए आप लॉयर एज अ लॉयर नहीं जा सकते हैं, जबकि एज अ सॉलिसिटर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सॉलिसिटर जो होता है उसके पास सर्टिफिकेशन होता है क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी से। तो obviously वो सब कुछ कर सकता है। लॉयर ये होता है कि उसने सारी चीज़ें सीख ली है, ही इज नाउ एडमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्वींसलैंड एंड ही इज रेडी टू प्रैक्टिस। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस आपको वो सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जो कि क्वींसलैंड लॉ सोसाइटी से मिलता है, तब आप सॉलिसिटर बनते हो। और रही बात बैरिस्टर की, बैरिस्टर जो होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं सॉलिसिटर से या लॉयर से। आइदर आप एक बैरिस्टर बने या लॉयर बने या सॉलिसिटर बने, वो दो सेपरेट चाहिए। बैरिस्टर का मेन काम होता है कोर्ट में जो केसेस होते हैं उनको देखना, कोर्ट में कोर्ट वर्क, और कोर्ट से पहले जो केसेस होते हैं वो लॉयर के पास जाते हैं, तो जो लॉयर होता है, सॉलिसिटर होता है, वो केसेस सारे सारे बनाता है, उसके बाद फिर वो जब डिस्प्यूट जब ज़्यादा बढ़ जाती है वो फिर बैरिस्टर को हायर करना पड़ता है।
0: अच्छा, मुझे जानकारी ये थी, जितना मुझे पता है, वो कह रहे हैं कि जब ना जो मान जो जज होते हैं
1: जी,
0: जब उनके पास कचहरी में केस जाता है तो वहां पर जो लॉयर होते हैं, जो सॉलिसिटर होते हैं, वो बहस नहीं करते, वहां पर बैरिस्टर की जरूरत पड़ती है।
1: जी जी, वही वही, वो जैसे मैंने कहा कि कोर्ट में जो भी होता है वो बैरिस्टर नॉर्मली हैंडल करते हैं, और उससे पहले जो प्रोसीडिंग होती है, जैसे कि जो भी उससे इनिशियल स्टेजेस होती हैं, वो सारा सारा सॉलिसिटर्स करते हैं।
0: अच्छा, आप सॉलिसिटर हो?
1: जी, मैं सॉलिसिटर, एंड यू कैन ओनली आइदर बी बैरिस्टर और सॉलिसिटर, एक चूज करना होता है।
0: ओके, सो आपने सॉलिसिटर चूज किया।
1: जी,
0: आप लॉयर से ज्यादा पैसे बनाते होगे ना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: लोग देखते हैं ना भाई, इनमें से पैसा कौन बनाता है ज्यादा?
1: बैरिस्टर।
0: बैरिस्टर,
1: बैरिस्टर।
0: सो मैं बैरिस्टर बनूं?
1: जी।
0: ओके। जी, ऑस्ट्रेलिया में एक बैरिस्टर की असल में भूमिका होती क्या है?
1: बैरिस्टर की,
0: सॉरी, सॉलिसिटर। अब हम सॉलिसिटर पर ही रहेंगे।
1: अच्छा, जी जी जी,
0: बैरिस्टर तो मेरे बनना है।
1: नहीं नहीं, आप बनिए। बिल्कुल, बेशक। तो सॉलिसिटर जो होता है वो इन, देखिए मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। सॉलिसिटर का काम ये होता है कि अपने क्लाइंट्स को एक प्रिसाइज एडवाइस देना
0: जी,
1: और क्लाइंट्स जो भी इंस्ट्रक्शंस दे उनको फॉलो करना इन सच अ वे दैट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। तो जो भी बेस्ट है क्लाइंट के लिए वो मेरे ख्याल में सॉलिसिटर को करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
0: लोगों की शिकायत होती है कि जब हम जो वकील वगैरह जो सॉलिसिटर वगैरह कर लेते हैं, इनसे जो फीस तय होती है ना, जो महीने महीने के बाद पैसे मांगते रहते हैं, ये क्या मसला है?
1: नहीं नहीं, हम लोग फिक्स फी में काम करते हैं, आप चिंता मत करिए।
0: ओके, टू द पॉइंट पर आते हैं जी अभी, क्योंकि आप प्रॉपर्टी को डील करते हैं, उनमें लीगल एडवाइजेस करते हैं
1: जी,
0: आपने अपने सॉलिसिटर, मैं सॉलिसिटर ही बोल देता हूँ
1: जी जी,
0: उसके सामने आपने प्रिंसिपल लगाया, उसका क्या मतलब है?
1: प्रिंसिपल का मतलब वो होता है कि जो कि अपना खुद का लॉ फर्म खोलता है
0: जी,
1: उस वो एक प्रिंसिपल सॉलिसिटर होता है, और उसके अंडर जो भी सॉलिसिटर काम करेगा वो सॉलिसिटर से होता है।
0: तो वो मास्टर होते हैं, आप हेड मास्टर हो
1: कह सकते हैं आप।
0: अच्छा,
1: डायरेक्टर भी होता है, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर एक ही चीज होती है।
0: तो दो तीन क्वेश्चन भेजे हैं, नाम नहीं लिखा, वो भी मैं ऐड करता चलता हूँ।
1: प्लीज।
0: पहली बार घर खरीदने वाले लोग सबसे बड़ी गलती कौन कौन सी करते हैं, बताओ तो जी।
1: काफी गलत करते हैं पहले। वो मेरे ख्याल में उनके जो कभी कभी ऐसा होता है कि वो एजेंट के इन्फ्लुएंस में आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, उसके बाद मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया क्योंकि एजेंट ने कहा था कि साइन कर दो, या किसी ने भी कहा था साइन कर दो। तो मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस सॉलिसिटर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है।
0: दूसरा क्वेश्चन मैं इसी के साथ अटैच कर देता हूँ
1: जी,
0: जेई उन्होंने लिखा कि कॉन्ट्रैक्ट सिर पर हस्ताक्षर करने से पहले किन बातों की जांच करनी चाहिए?
1: श्योर, पहली चीज़ तो इनिशियल डिपॉजिट कितना अमाउंट होना चाहिए, कब देना है
0: जी,
1: उसके बाद बैलेंस डिपॉजिट कब देना है। नॉर्मली जो बैलेंस डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट शुड बी द, आई वुड से शुड बी द मिनिमम अमाउंट यू कैन पे, प्रॉब्ली $1,000 दीज डेज इज स्टैंडर्ड, शुड नॉट पे $20,000 और $30,000, टू मच अमाउंट एट द टाइम ऑफ बेसिकली वेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ये आप दें। और बैलेंस डिपॉजिट आपको कब देना है वो, उसमें देखिए आप फाइनेंस डेट होनी चाहिए, बिल्डिंग इन पेस्ट डेट होनी चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से शुरुआत से ही आप चेक करके चलें, ताकि अगर कोई दिक्कत हो उस घर में, बिल्डिंग इन पेस्ट अगर वो फेल हो जाता है तो आप आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं ऑन द बेसिस की बिल्डिंग पेस खत्म फेल हो गया है, या तो फिर फाइनेंस जो है वो आपका अप्रूव नहीं हो पाया बाय एनी चांस. तो सो इन दैट केस, इन बोथ केसेस यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी पेनल्टीज.
0: अच्छा, कन्विंसिंग क्या होती है?
1: कन्विंसिंग वही, इट्स अ वेरी सिंपल टर्म फॉर सेलिंग और परचेजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी.
0: ओके, सो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है?
1: इंपॉर्टेंट तो होती है क्योंकि लोगों को जिसको ही घर खरीदना है बेचना है उसके लिए होता है. कन्विंसिंग कैन बी मेनली रेजिडेंशियल, घर खरीदना है, लैंड खरीदना, उसको कन्विंसिंग कहते हैं. अदरवाइज अगर बिजनेसेस सेल और परचेज होते हैं उसको कॉमर्शियल.
0: अच्छा, जैसे हम भी देखते हैं, आपको भी पता होगा, आप तो इसी में रहते हो, कुछ करना ऑक्शन पर लगे होते हैं
1: जी.
0: एक तो होता है कि इसका जो प्राइस है आप वो अपनी एप्लीकेशन डालो, वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओनर से पूछ के भी चलो ये वाला अच्छा है.
1: बिल्कुल,
0: कुछ ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होती है
1: जी.
0: ऑप्शन के माध्यम से अगर आप घर खरीदते हो, ये कोई कानूनी जोखिम है इसमें?
1: आजकल ऑप्शन हो रही है काफ़ी, काफ़ी लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं घर ऑप्शन से. प्रॉब्लम ऑक्शन में है कि जो ऑक्शन में आप खरीदते हैं वो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है
0: जी.
1: आपने एक बार ही ऑक्शन में साइन कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वो अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है. उसमें आप ये नहीं कह सकते ओ मेरा फाइनेंस फेल हो गया, तुम
0: अगर फाइनेंस अप्रूव ना हो बाद में ऐसी मुश्किल आए तो मुकर नहीं सकते
1: उसमें. उसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए प्रॉब्ली ऑक्शन में आप जब भी जाओ तो कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से रीड करो, और इफ़ पॉसिबल ऑक्शनियर से एक दिन पहले या दो दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मांगो, और उसको किसी सॉलिसिटर को जो स्पेशलाइज करे प्रॉपर्टी लॉ में उसको दीजिए आप रिव्यू करने के लिए. ये मेरी एडवाइस है
0: जी. सो मोस्टली आपको लाइव अभी क्वींसलैंड से सुन रहे होंगे क्योंकि आप क्वींसलैंड में सर्विस देते हो
1: जी.
0: क्वींसलैंड में घर खरीदने वालों के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है?
1: सबसे महत्वपूर्ण सलाह तो ये है कि फाइनेंस हमेशा बैंक प्री अप्रूवल हो तो ज़्यादा अच्छी बात है. दैट वुड बी द फर्स्ट पॉइंट कि आपके पास कैपेसिटी है खरीदने की और कितने की कैपेसिटी खरीदने की. लाइक अगर आपका प्री अप्रूवल 1 million आता है और अगर आप 2 million की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. और ऑल्सो आपको देखना होगा कि जहाँ पे आप घर ले रहे हैं आर यू हैप्पी विद दैट, और कौन सी कैसी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, इज इट अ टाउन हाउस, अपार्टमेंट, वैकेंट लैंड और हाउस.
0: ओके, कई बार मैंने खुद भी देखा है
1: जी,
0: जो बैंक का अप्रूवल लेटर होता है जिसमें आपको उन्होंने फंड वगैरह दिए होते हैं, हाँ ठीक है हम आपका इतना कवर करेंगे जी. तो उसमें कई बार वो स्टार्टिंग लाइन लिखी होती है जे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर लोन आपको हम अप्रूव करके दे रहे हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है?
1: उसमें क्या होता है, वो एज अ सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी मान के उसको आपको अप्रूवल देते हैं फाइनेंस की
0: जी. सो आप कहाँ पर सब्सिडी देते हैं क्वींसलैंड में? ब्रिस्बेन में
1: जी.
0: कहाँ पर है आपका ऑफिस?
1: मेरा ऑफिस तो टुवोंग में है, पर क्योंकि ये ऑल ओवर क्वींसलैंड है, इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक नाउ. सो इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट्स आर मैंडेटरी इन क्वींसलैंड नाउ सिंस 2023. तो सब कुछ आजकल ऑनलाइन ही है सारा का सारा. तो एनीवेयर इन क्वींसलैंड हम सलाह दे सकते हैं ओवर द वेबकैम, ओवर द फोन, ईमेल्स, एनीथिंग रियली.
0: सपोज कोई बंदा आपको फ़ोन करता है
1: जी,
0: कोई हो सकता है कोई नया नया पक्का हुआ हो, वो कह रहा है कि यार मेरे पास ना 7-8 लाख डॉलर है
1: जी,
0: मुझे घर चाहिए
1: जी.
0: ऐसे बंदे को क्या कहूँगे आप?
1: कहाँ पे चाहिए? आपने किसी एजेंट से बात की है? कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी के बारे में मैं खरीदवा, लाइक आई कैन हेल्प इन रिव्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड परचेजिंग ऑफ प्रॉपर्टी. I can't give them a property. That's their job to find, probably look for a good registered agent in the respected area they are looking to purchase the property.
0: Clients ke saath keval milne ka swab ban jata hai. Kai baar market mein bande mil jate hain.
1: Ji.
0: Wo keh rahe the jo ye solicitor wagera hote hain na, jab inse humne deal karni hai to wo bahut meetha meetha chalte hain. जब काम शुरू हो जाता है ना, जब पता ही नहीं तो फोन ही नहीं उठाते. ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों करते हो आप?
1: वेल, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, पर मुझे अपने बारे में पता है कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स की 100% जिम्मेदारी लेता हूँ और हमेशा उनकी सही एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ.
0: यकीन कर ले हम
1: बिल्कुल करिए.
0: बहुत बहुत जानों ने कभी इकट्ठे बैठते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे वकील ने मुझे बहुत ख़राब किया, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता. फिर जब देता है इतनी जल्दी में देता है कि जेल लेके आओ, जेल लेके आओ, जेल लेके आओ. ऐसा तो इंडिया में चलता है.
1: पता नहीं, यहाँ पे तो हम लोग शुरुआत से ही इनिशियल लेटर ऑफ इंगेजमेंट भेजते हैं जिसमें सारी प्रोसेस उनको लिखी होती है, डेट्स लिखी होती है, अमाउंट्स लिखे होते हैं, सच एज ट्रांसफ़र ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, पैक्सा फ़ीस, आउटलेस, सर्चेस, प्रोफेशनल फ़ीस, हर चीज़ लिखी होती है. और उसके अलावा भी हम लोग उनसे फ़ोन में पर्सनली मैं सलाह देता हूँ, बताता हूँ एक एक चीज़ ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड. उनको काफ़ी ज़्यादा लगता है कि अरे पहली बार है, हमने किया नहीं है, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा थोड़ा उनका हैंड होल्डिंग करनी होती है, पर दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ जॉब.
0: ओके, एक सिंपल सा और क्वेश्चन है
1: जी.
0: कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने में क्या अंतर है?
1: हाँ, काफ़ी अंतर है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है वो नॉर्मल घर हो गया आपका, अपार्टमेंट हो गया, ड्वेलिंग हो गई, आपका हाउस हो गया, आपका वैकेंट लैंड हो गया जहाँ पे आपको घर बनाना है या टाउन हाउस बनाना है, वो सब हो गया. पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो जैसे आपका बिजनेस हो गया कोई, जैसे कि आपका शॉपिंग सेंटर हो गया, ये चीज़ें. तो ऑब्वियसली लॉज आर डिफरेंट, बोथ completely different, but they both are still like electronically you can purchase them on PEXA.
0: Okay, banking se related hai kuch mere paas sawal.
1: Sure.
0: Home loan document mein log aksar kaun kaun si mahatvapurn baatein padhna bhool jate hain jo apne shuru mein baat ki thi.
1: Home loan mein dekhiye amount कि कितना अप्रूवल उनको मिल रहा है, और वो कभी कभी उनको लगता है, और फीस उसमें कितनी कट रही है, उनकी हिडन कॉस्ट एंड चार्जेस एज यूजुअल होता ही है सबके
0: जी.
1: तो वो सब मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो लोन देखना है कि 30 इयर्स का, 25 इयर्स का है, और कितने परसेंट उनका लोन रीपेमेंट है, जल इंटरेस्ट रेट है, लाइक 6.25 है कि, और दिस डिफ वेरिएबल चल रहा है 6.35 है, क्या है.
0: अच्छा, मंथली रीपेमेंट्स देनी अच्छी होती है कि फोर्टनाइटली देनी अच्छी होती है?
1: फोर्टनाइटली मेरे ख्याल में अच्छी होती है, बट डिपेंड्स ऑन पीपल क्या वो समझते हैं, बट आई थिंक फोर्टनाइटली इज बेटर.
0: अच्छा, एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है.
1: बिल्कुल.
0: वो वैसे आपके दायरे में नहीं आता पर पूछ लेते हैं.
1: Sure.
0: किसी को जो समस्या आई है, लैंड ले ली
1: जी,
0: लोन वगैरह अप्रूव हो गया, बिल्डर को बोल दिया कि बनाओ भाई. बिल्डर लेट करता जा रहा है, आखिर में बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, 40-50 हज़ार डालो और लेके आओ, फिर बना दूंगा, नहीं तो मेरी छुट्टी. इस स्थिति में क्या होगा?
1: प्रॉब्ली सॉलिसिटर को आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, सॉलिसिटर को कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा कि उसमें क्या क्लॉजेस हैं, उसको कैन ही गेट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ईजली, आर देयर एनी क्लॉजेस फॉर दैट. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो ही जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द यू नो द कॉन्ट्रैक्ट, और दे मे बी अ क्लॉज देयर. अगर ऐसा कुछ अगर होता भी है तो इन दैट केस वी हैव कोर्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, सो दे विल बी डिस्प्यूट.
0: अगर क्लॉजेस में लिखा ही नहीं कुछ भी हुआ कि अगर तुमने लेट किया तो तुम हफ्ते हफ्ते का इतना पैसा हमें नहीं दोगे, तो फिर वो कैसे उसको रोक सकते हैं? वो तो भाग गया
1: कोर्ट. that's where we go to court for any massive issues like that. Obviously, you have to see the contract for each and everything. But agar contract mein aapko, like buyer is right, suppose, or jo seller or jo developer tha, he just up and go. Us situation mein, mere khayal mein, court is the best venue to seek help.
0: Abhi RBI ne jo rates hai usko thoda sa rok hi liya hai, abhi badhaya nahi hai. Badhti vyaj daron ke daur mein ghar khareedne walon ke liye aapki salah kya hai?
1: Abhi?
0: Yes. Especially
1: khareedo abhi.
0: Brisbane aur Perth. इसकी मार्केट ऊपर चल रही है.
1: देखिए पर्थ का तो मुझे अंदाजा नहीं, पर ब्रिस्बेन का मुझे पता है कि प्लीज ये दो साल पहले भी हुआ था सेम चीज ऑलमोस्ट. ये कट कॉपी पेस्ट मुझे लगता है सिनारियो. दो साल पहले भी ऐसे ही था, 6.25 रेट चला गया था 6.3. उसके बाद दो साल में कटते कुटाते नीचे आया, उसके बाद विद इन टू और टू 3 months में वापस चला गया 6.25 to 6.335 right now what the variable rate is. मेरे ख्याल में हम लोग को property खरीदनी चाहिए ताकि उसका जो Brisbane में आप कहीं पे भी खरीदें property, उसका जो price है जिस तरीके से वो बढ़ रहा है उसको देखते हुए मैं market को अभी predict कर सकता हूँ कि ये बढ़ता ही जाएगा. तो अगर आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी सपोज 700,000 की, अगर हाउस है तो एक साल बाद वो श्योरली वो 50,000 to 100,000 उसकी वैल्यू बढ़ सकती है.
0: ओके okay, कई स्टूडेंट को भी थोड़ा कीड़ा होता है, जेब में चार पैसे होते हैं, वो कह रहे हैं यार घर खरीद लूँ मैं, तो क्या क्या सलाह दोगे?
1: स्टूडेंट वाओ कितना है
0: क्लाइंट है
1: कि डिपेंड्स कितने पैसे क्या है.
0: नहीं अभी वो पीआर नहीं हुए तो क्या सलाह होगी?
1: वेरी हार्ड फॉर देम. टेल देम टू स्टडी, पढ़े अभी पीआर बने तब बात करें क्योंकि फॉरेन रेसिडेंस में उनका फिर होगा, उसमें शायद उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा. और प्रॉब्लम ये है कि आजकल विद द न्यू लॉस कमिंग इन, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं कि वो तो फॉरेन इन्वेस्टर की तरह खरीदेगा, देन इट्स गोना बी रियली हार्ड फॉर हिम टू परचेज, क्योंकि उसमें लॉज अभी चेंज हो रहे हैं. मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि फॉरेन रेसिडेंट के लिए क्या लॉ एग्जैक्टली चेंज हुए हैं.
0: वो तो अभी पार्लियामेंट में भी शोर मच रहा है, तो पार्टी का नाम तो नहीं लेंगे वो तो कह रहे हैं
1: सब सबको पता है
0: कर दो इनका.
1: सबको पता है. तो चाइना से जो लोग खरीदते थे यहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी गई है स्पेशली चाइना से, कि ब्रिस्बेन में काफी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी चाइनीज जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्हें खरीदी है. तो ये लोग बेसिकली चाहते हैं कि वो ना हो.
0: ओके थोड़े से सवाल हैं, जल्दी जल्दी से वो लेंगे. क्वींसलैंड से रिलेटेड देखेंगे, हम क्वींसलैंड में रह रहे हैं, आपकी सुविधाएं ज़्यादा क्वींसलैंड में, वैसे चलो ऑनलाइन कहीं कहीं भी मिल सकती हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में. जो अब तक की कंडीशंस चल रही है, सिचुएशन चल रही हैं, घर खरीदना या किराए पर रहना, कौन सा किस पर टिक करोगे?
1: रेंट मनी इज़ अ डेड मनी, आई विल टेल ऑल माई क्लाइंट्स. रेंट जो आप दे रहे हो उससे अच्छा ये कि मॉर्गेज दीजिए
0: जी,
1: कम से कम वो आपका खुद का होगा.
0: आप स्टूडेंट को पुश कर रहे हैं
1: स्टूडेंट को नहीं
0: जगह जोड़ कराओगे आप? ओके ऑप्शन या प्राइवेट सेल?
1: प्राइवेट सेल.
0: प्राइवेट सेल वो आपने पहले डिटेल में बताया था. प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ा सबसे बड़ा रिस्क क्या है?
1: प्रॉपर्टी मार्केट
0: के हिसाब से बता रहा
1: हूं, क्वींसलैंड के हिसाब से वेरी हार्ड टू से. कोई रिस्क मुझे तो नहीं दिखता,
0: कोई बड़ा रिस्क जिसमें हर वक्त फंसते हैं एज अ क्लाइंट.
1: अच्छा एज अ क्लाइंट, सॉरी मुझे, मैं एज अ लाइक नॉर्मल एज अ मार्केट सोच रहा था. मेन रिस्क है वही फाइनेंस का, और फाइनेंस क्लॉज जो होता है उसका है कि फाइनेंस अप्रूव होता है कि नहीं. और दूसरा है बिल्डिंग इन पेस्ट का, कि बिल्डिंग इन पेस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई अगर आपके जो आप घर खरीद रहे हो उसमें, दैट्स व्हेयर यू हैव टू टेक.
0: मैं आपको रोक रहा हूँ, बिल्डिंग इन पेस्ट इंस्पेक्शन जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट सेल से डन होने से पहले पहले होती है?
1: नहीं नहीं बाद में होती है उसमें.
0: हाँ वो बाद में, लेकिन लीगल पेपर साइन से पहले कि हम अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं।
1: हाँ, वो जैसे नॉर्मली स्टैंडर्ड दिस डेज 14 डेज का है, सपोज करिए, तो 14 डेज आपके जब आपने साइन किया है, द डेट आपने साइन किया तब से आपके 14 डेज हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए कि अगर आप बिल्डिंग इन पेस्ट करते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, देन यू कैन जस्ट वेव दैट कंडीशन। अगर कोई दिक्कत है तो आइदर यू हैव थ्री थिंग्स। फर्स्ट थिंग, आप उसको सेलर से कहिए कि वो उसको रेक्टिफाई करें, या दूसरी चीज़ ये है कि आप कुछ मत करिए उसमें। अच्छा। या तीसरी चीज़ ये है कि आप जो टर्मिनेट कर सकते हैं।
0: ये तो 3 करोड़ का क्वेश्चन होगा ना फिर। इसमें मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: कई बार ना जो जो सोलिसिटर वगैरह होते हैं, जहाँ जो प्रॉप जो सोलिसिटर का तो काम नहीं है, जो जो प्रॉपर्टी एजेंट है जिसने आपको घर सौंपा है, वो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है जी पेस्ट एंड बुक करवा लो, बिल्डिंग पेस्ट एंड बिल्डिंग जो दोनों टर्म होती है
1: जी जी,
0: साथ में वो आपको ना उस बिल्डिंग का वो एक पेस्ट कंट्रोल का किया हुआ जो बिल्डिंग का वो भी दे देंगे, वैसे तो करवाई हुई है जी, देख लो जी जो ओके है। जब हम अपने प्राइवेट से करवाते हैं उसमें डिफेक्ट्स निकल जाते हैं, तो ये कैसे है फिर?
1: पता नहीं, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि बिल्डिंग एंड पेस्ट इंस्पेक्टर जो होते हैं वो थर्ड पार्टी हैं, शुड बी इंडिपेंडेंट।
0: इसका मतलब उनकी सीटी डली हुई होती है?
1: मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो हमारे जो श्रोता जो सुन रहे हैं वो समझ सकते हैं।
0: ओके। तो पूछने को तो और भी बहुत कुछ है, आज हमने 20-25 मिनट लगाने थे, तो साढ़े जितने भी सुनने वाले ने, सब तो पहला तो मैं राजीव का धन्यवाद करदा क्योंकि साढ़े नाल होर भी गैसट आए हुए हैं, उन्होंने भी गलबात करनी है। साड़ी कोशिश रहेगी कि असी हरेक प्रोग्राम के चाहे उन्होंने फोन के नाल राबता बनाइए, तो चाहे वह स्टूडियो के आन, जिन्हें भी थोड़े सवालत आते रहेंगे तुम इस नंबर के उपर सवाल दे सकते हो, तो वो आप जरूर राबते रहा करा कि ये सारिया जड़िया दिमागी परेशानियां ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाए। पर हाँ, जो तुम उन्होंने ऑफिस जाओगे फिर तो थोड़े तो कारण घंटे चलेंगे।
1: शुक्रिया।
0: जाते जाते कोई होर अपने वालों सुनेहा देना चाहो, जाते जाते हिंदी में बोलना पड़ेगा भी श्रोता।
1: मैं बस यही कहना चाहूँगा सबसे कि कुछ भी आप लोग खरीदना चाहें या बेचना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा एक प्रॉपर्टी सॉलिसिटर को चूज़ करें जो कि प्रॉपर्टी लॉ में उसकी नॉलेज हो, ज्ञान हो उसका, और मेक श्योर करें कि वो आप कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करें बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरी सबसे बड़ी सलाह है।
0: जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा है,
1: चलिए चलिए पूछ ली।
0: वो कह रहे हैं कि अगले वीक उन्होंने आना है, वो अगले वीक देखेंगे, ये बता दो कि हम तो कह रहे हैं ब्रिस्बेन में रह रहे हैं, ठीक है, सो ब्रिस्बेन में भी जे बात है, कला ब्रिस्बेन भी नहीं बोला, इस बीच उसके हाथ में जुड़ा है, लोगन जुड़ा हुआ है
1: कहीं पे भी,
0: तो जे सारा एक ही एरिया है, चाहे वहां पर नॉर्थ में चले जाओ, सनशाइन कोस्ट तक चले जाओ
1: जी।
0: कह रहे हैं कि भाई मार्केट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है
1: जी,
0: जो आज से 2 साल पहले 5 का था 7 का हो गया, तो 2 साल के बाद जो 9 का हो जाएगा, फिर इतना चलता रहेगा जी मार्केट?
1: मेरे ख्याल में 2 साल के बाद मिलियन होगा जी, इतना महंगा।
0: मैं तंबू ला लूं फिर
1: अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट जिस तरीके से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है,
0: रीजन क्या है इसका? मेलबर्न सिडनी में तो मार्केट डाउन है,
1: क्योंकि वहां के जो मेलबर्न और सिडनी में जिस तरीके के रेट्स हैं, वहां के जो प्राइसेस हैं, परचेस प्राइसेस हैं एज कम्पेयर टू क्वींसलैंड काफ़ी ज़्यादा है
0: जी,
1: तो वहाँ के भी इन्वेस्टर्स जो हैं सारे सारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल में वो तो है ही, ऑब्वियसली वो तो खरीदते रहेंगे, पर हम लोग जो क्वींसलैंड के हैं वो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। और देर इज़ अप टू
0: ओलंपिक 32,
1: ओलंपिक इज ऑलवेज देयर, ओलंपिक इज ऑलवेज देयर, तभी मैंने कहा कि 2 साल में है, पर मेरे ख्याल में मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा क्योंकि देर इज ऑलवेज अ हाई डिमांड ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी
0: जी। शुक्रिया जी, धन्यवाद थोड़ा सुनते हो, तुम रेडियो 4EB इस 1 घंटे की पटारी के पंजाबी पटारी जुड़े हुए हैं, साढ़े को तकरीबन हजे भी 25 मिनट पाए हैं, सारा समा आपने अपने अगले गैसट देना है। धन्यवाद राज जी, अगले हफ्ते भी थोड़े संपर्क रहेंगे जी। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੱਕਵੇਂ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਰਾਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੇ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਚਲੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ।

0: जी एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम गाँव पंजाब दे विच। मैं हरजीत सड़ा ते साढ़े बाबरी पंजाबी प्यार करने वाले स्रोते पर अज तो मैं हरियाणा हिंदी वाला भी कहना पड़ना कि हिंदी वाली भैन जी भी काफ़ी इकट्ठी हुई अज जी शुक्रिया एक बार फिर जिन्होंने रेडियो की घुग्गी नपी आ तुसी इस वक्त रेडियो 4EB 98.1 FM कैंगरू पड़ा बिस्मस स्टेल दे नाल 9 तो 10 हर शनिवार थोड़े नाल बिल्कुल लाइव गल्लां हुंदियां ने। कोई टेप टूप नहीं चलदी, सारा कुछ लाइव ही चलण डिया आ। जो ऊच नीच है सारे थोड़े सामने ही आ। तो धन्यवाद साडे पहले गैसट दा राज जी दा, अज उन्हां दे नाल थोड़ा इंट्रोडक्शन हुई है, उन्हां दी काबिलियत थोड़े सन्मुख कीती है कि तुसी उन्हां तों सवामा लै सकदे आ। साडे नाल हर शनिवार प्रोग्राम दे विच राबता बनाउणगे ते इह सारियां प्रॉपर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਗੇਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀਏ ਜੀ?
1: ਰਾਮ ਰਾਮ
0: ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ
1: ਪਾਣੀ
0: ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚਲੇਗਾ,
1: ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
0: ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਂ?
1: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ।
0: ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਏ,
1: ਜਾਣੇ ਕਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਜਾਣੇ ਕਾ ਦਿੱਲੀ
0: ਜੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਐਸਾ ਕਿਆ ਲਗਾ ਵਹਾਂ ਪਰ? ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਗਰਮੀ ਥੀ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਲਗਾ?
1: ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ।
0: ਪਰ ਹਮ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਆਪ ਤੋ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਕੋ ਪੀਛੇ ਸੇ, ਆਪਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
1: ਕੁੰਡੀ ਅਭੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਚਲਤੀ ਥੀ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਬ ਆਪਕਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਇਆ ਥਾ ਜਹਾਂ ਪਰ?
1: ਹਾਂ, ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਨੇ।
0: ਠੀਕ ਹੈ
1: ਜੀ।
0: ਜਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਗਾਉਂ ਸੇ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੋ ਹਮਾਰੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋ ਡੌਂਕੀ ਮਡੌਂਕੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਥੇ ਇਟਲੀ ਉਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਗਲੂਡ ਸਾਰਾ ਵਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ
1: ਜੀ।
0: ਸੋ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਵੋ ਦੇਖਾ ਹੋਆ ਥਾ, ਆਪਕੇ ਵੋ ਏਰੀਆ ਥਾ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਥਾ ਤੋ ਛੇਤਰ ਉਠਾ ਲੇਤੇ ਥੇ
1: ਜੀ।
0: ਆਪਕੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਬ ਆਪਕੋ ਕਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਤੋ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਤੋ ਡੰਡਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਛੇਤਰ ਉਠਾਇਆ?
1: ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਥੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਏ ਅੱਗੇ ਬੜਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ
0: ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਰ ਬਤਾ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
1: ਹਾਂ
0: ਤੋ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
1: ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਪਾਨ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਆ ਥਾ ਉਹਨੇ, ਵਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਥੇ ਜੋ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇ।
0: ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਮੀਨਾ ਦੇਵੀ,
2: ਹਾਂ ਜੀ,
0: ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਆ ਹੋਗਾ?
2: ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੂੰ।
0: ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ
2: ਹੂੰ ਜੀ।
0: ਕੋਈ ਸੀਟੇ ਸੂਟੇ ਤੋਂ ਤੁਮ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾੜੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਵੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਰਾਓ ਉਠਾਓ। ਤੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨਾ?
2: ਹਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
0: ਵੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਸੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕਰ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਗਾ
2: ਜੀ ਜੀ।
0: ਤੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਜਬ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰੇ ਹੋ,
2: ਹਾਂ ਜੀ,
0: ਵੋ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਬਤਾਓ ਨਾ ਕੈਸੇ ਲਗਾ?
2: ਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ।
0: ਕੈਸੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ? ਲੋਕ ਤੋਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਗੀ ਵਹਾਂ ਪਰ?
2: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੇ ਇਸੇ ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਪੂਆ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸਕੇ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛਾ ਹਮਨੇ
0: ਜੀ,
2: ਤੋ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਹਮੇ ਐਸੇ ਲੱਗਿਆ ਜੈਸੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ
0: ਜੀ,
2: ਜੈਸੇ ਆਪਣਾਪਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸਮੇ
0: ਜੀ। ਤੋ ਅਭੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪਰ?
2: ਹੋ ਗਏ ਹਮਕੋ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।
0: ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ?
2: ਹਾਂ।
0: ਤੋ आप हरियाणा से हो?
2: हाँ,
0: चलो हम तो ये कहते हैं आप अपने वतन इंडिया से हो।
2: हाँ जी।
0: चार पांच दिन में इन दोनों मुल्कों का जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहते हैं, इसमें कोई डिफरेंस लगा कि सारा सेम सेम ही है?
2: नहीं लगे जी।
0: क्या डिफरेंस है जी?
1: बहुत डिफरेंट, जैसे यहाँ का घूमने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, और मतलब हर चीज़ वहाँ से डिफरेंट है।
0: कोई एग्जांपल दो।
1: एग्जांपल जैसे सबसे ज़्यादा जैसे ट्रैफिक जो यहाँ फॉलो करते हैं, जो यहाँ के आदमी श्रोता हैं, बंदे हैं जो भी, वो बहुत अच्छा उनका पालन करते हैं।
0: आप नहीं करते वहाँ पर पालन?
1: इतना नहीं करते।
0: क्यों नहीं करते? लॉ तो ब्रिटिश का ही है, वही रूल है, वही किताब उठा लो।
1: रूल वही है, लेकिन वहाँ के जितने यहाँ मतलब स्टिक हैं वहाँ इतने स्टिक नहीं।
0: नहीं, पुलिस वाले तो स्टिक है, मतलब के फॉलो, मतलब के हम ही वहाँ पर लोग ही नहीं ना करते।
1: हाँ, लोग नहीं करते।
0: तो फिर कसूर तो फिर आपका ही हुआ ना।
1: हाँ, कसूर तो लोगों का ही है
0: जी।
1: हाँ।
0: चलो ये भी बढ़िया बात है, मानते तो है ना हमारे हमारा वो कसूर है। चलो खैर, आपके लड़के ने जब पहली बार बताया हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है
1: जी,
0: शायद वो तो उस वक्त पता ही नहीं होगा जी ऑस्ट्रेलिया है क्या।
1: जी नहीं पता था।
0: ठीक है, वहाँ उस समय तो अमेरिका कनाडा या इंग्लैंड इंग्लूड की होती थी, भाई चलो ब्लैक में जाके बदला भी लेना है हमने
1: जी।
0: तो चलो आपने उसको आज्ञा दे दी जाने के लिए
1: जी।
0: कुछ चिंता नहीं थी मन में?
1: चिंता तो थी, जैसे मतलब बच्चा पहली बार जा रहा है और वहाँ पर मतलब भाई आगे जाके सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो हर पेरेंट्स को मतलब चिंता तो होती है फर्स्ट में।
0: अच्छा, जो इंडियन आप माँ बाप हैं और भी मुल्कों से ऐसे सोचते होंगे
1: जी,
0: जब आप ये कहते हो कि हमारा लड़का या लड़की जाके सक्सेस हुआ, सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? क्या आप अपने लड़कों लड़कों से इच्छा करते हैं कि क्या उन्होंने सक्सेस क्या पानी है? पैसे कमाने हैं, घर लेने हैं, या क्या करना है?
1: जैसे मतलब जो पढ़ाई के लिए जब बच्चे आते हैं तो मतलब उनको पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको मतलब अच्छी तरह कोई बढ़िया सी उनको सर्विस मिल जाए, और
0: अच्छा सर्विस भी मिल गई, और
1: सर्विस के बाद उनको अपना यहाँ पर
0: घर भी मिल गया। हाँ। वो दे देंगे, राजी ले देंगे। ये सक्सेस होगी?
1: हाँ जी,
0: ये तो सभी करते हैं।
1: हाँ, तो यही सक्सेस है जीवन में। और अपने मतलब पेरेंट्स दोनों का मतलब आपस में विचार विमर्श पेरेंट्स के साथ होता रहना चाहिए।
0: माता जी, आप क्या सोचते हैं सक्सेस की डेफिनेशन क्या है?
2: मैं ये सोचती हूँ मेरा बच्चा है सबसे अच्छा करे, दूसरा देश जा रहा है, कुछ नया काम करे,
0: चोरी चकारी
2: नहीं नहीं अच्छा काम करे, जैसे माँ बाप का नाम रोशन हो। अकबर ये किसी का, ये माँ का लाल है।
0: इस सक्सेस में अगर मैं उन आपके बच्चों की पीआर या सिटीजन जोड़ दूं, वो भी आपके मन में होता है कि यार ये भी होना चाहिए, अदरवाइज वो ठोक नहीं बनेगा? ऐसा भी होता है?
2: वो तो देखो, जो बच्चा अच्छा करेगा तो उसको ऊपर वाला अपने आप दे देता है।
0: अच्छा, आपके बच्चों को सिटीजनशिप वगैरह मिल गई, सारा कुछ बन गया, कभी आपके दिमाग में ये आएगा भी चलो यार वापस चलो बहुत हो गया?
1: नहीं, वापस का तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का और वहाँ का बहुत डिफरेंट है। यहाँ का मतलब आदमी, यहाँ का जो वातावरण है और जिस तरह का यहाँ मतलब एक दूसरे से प्रेम है इंसान से इंसान को।
0: नहीं, नफरत भी है जहाँ पर?
1: हाँ, अभी तो चार पांच दिन लग रहे आए तो ऐसे लग रहा है कि प्रेम
0: वो आपको अच्छा अच्छा दिखाते हो। अच्छा, आप कितने साल बाद माता जी अपने बेटे को मिले?
2: मैं मिली फरवरी में, तीन हो गई, इसको चौथा में चौथा साल लग गया।
0: चौथा साल। कैसा महसूस हुआ? थप्पड़ लगा?
2: ऐसे लगे बेटा बहुत दिन पता नहीं कहाँ चला गया है, आई तो मैं ऐसा लगे जब आज मुझे पता नहीं क्या मिल गया है।
0: अच्छा, मैं अपनी बात बताता हूँ, जब हम इंडिया में थे ना तो चलो हम तो काम भी करते थे, टीचर थे हम, पर शरारतें तो करते थे, गांव से थे तो हमें तो गाली पड़ती थी, हमारा डांग सोटा सब चलता था हमारे साथ। तो आपके जहाँ भी चलता होगा,
1: बिल्कुल
0: हरियाणा में तो मजबूरी है ना, डांग सोटा चलाते और तो कुछ आता नहीं।
1: जी जी,
0: ठीक है। तो अब आप हफ्ता हो गया आपको आए हुए, जब आपने इतने साल हो गए, दो तीन साल हो गए आप प्रोग्रेस देख रहे हो अपने बच्चे बच्ची की, अब आपने उसको आके आंखों के सामने देखा, ठीक है, क्या बदलाव लगा? कोई लगा कि कोई पॉजिटिव बदलाव आ गया, सकारात्मक, कैसे कहते हैं हिंदी में,
1: सकारात्मक?
0: हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे
1: जी।
0: कोई नेगेटिव क्या आया, मतलब कि क्या लगा आपको?
2: मेरे को बदलाव ये लगा, जैसे मैं रात में सोई सुबह उठी तो ये मेरे को दिखाई नहीं दिया
0: ऐसे, जे तो वैसे किसी को दिखाई देते नहीं, स्लेटा है जी।
2: तो मुझे ऐसे लगा जानू कल तो मैंने देखा था, आज वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं बोल रही थी इनको।
0: अच्छा फिर इसका क्या मतलब आपने सोचा था आपके दिमाग में भी, जी दिखता ही नहीं अगर कहाँ गया है, ये कोई लड़के लड़कियों के साथ घूमता है?
2: नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन
0: नहीं, हमें पता है।
2: थोड़ी बहुत देर दी, खैर फिर वो ऐसे लगा ना उसको फिर देख ले एक बार।
0: अच्छा तो इन्होंने बताया नहीं कि भाई माता जहाँ पर काम के अलावा फिर और कुछ नहीं चलता, हमें उस काम के लिए टाइम पर जाना ही होता है। इंडिया में तो 7-8 बजे तक तो माँ उसको चाय के लिए उठाती है।
2: मालूम था ना कि ये सुबह इतना जल्दी चला जाएगा।
0: पीछे घर में और कौन है, इसका भाई है कोई? देखो जो चार गोरियां पीछे खड़ी है मेरे, जी मैंने क्लिक लगा दी है, तो वो पुश होते होंगे वहां पर।
2: हाँ वो बोलती है मम्मी अच्छे अच्छे फोटो खींच के भेजना
0: जल्दी जल्दी जल्दी। कंध को क्या कहते हैं घर में जो कंध डालते हैं? नहीं नहीं नहीं नहीं कंध नु की कहते हैं भाई, ओ मिस्त्री कंध नहीं पाते होंगे इटा दी,
3: इंग्लिश में क्या
0: वॉल,
2: दीवार,
0: ऐसी ऐसी बोटो दिखा के बीड़ो दिखा के घर में छेती दीवार बन जाएगी। क्योंकि वो पूछ हो जाएगा उनका दिमाग तो वो पूरा नहीं होगा, उनको फिर बताना पड़ेगा भी देखो ये ठीक तो है सिस्टम जहाँ की गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन इसमें हार्डवर्क बहुत है, इसमें स्ट्रगल है, वो छिपा हुआ है। आपको कई कई साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, माँ बाप को तो बच्चे नहीं बताते कि मेरे पास कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, पर माँ बाप को तो ये लगता है कि जो BYD लेके घूम रहा है, पर माँ बाप को तो ये तो नहीं पता ना वो बाइक 100 की किस्त भी दे रहा है हफ्ते हफ्ते की। तो चलो ये तो पिछले जो थे ना उनका चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर पिछले जो आपके बैठे होते हैं उनका दिमाग पुछ हो जाए, फिर आप उनको ये समझाने लगे कि देखो इतना आसान नहीं है, तुम्हारी तो आते ही, पहले तो तुम 6 महीने हमें सुबह 3-4 बजे उठ कर ही दिखाना शुरू करो, फिर कैसे सेटिस्फाई करोगे उनको,
2: बच्चों को,
0: मैं सभी को, बच्चे भी तो यही कहेंगे हमें पढ़ने के लिए जहां पर भी, तो मुश्किल हो जाएगा ना सेटल करना। तो ऐसे दिमाग
2: जैसे माहौल में बच्चा आ जाता है तो वो धीरे धीरे उस माहौल में ढल जाता है, जैसे इंडिया का माहौल अलग है और यहाँ का माहौल अलग है, उस माहौल में बच्चा फिर धीरे धीरे अपना डरने लग जाता है।
0: ठीक है, जब जे आया था ना जे तो अकेले आया था।
2: हाँ जी,
0: चलो मुझे तो नहीं जानता था, वैसे किसी दोस्तों से मिला तो मुझे बोला यार गोरियां तो दिखाने के लिए लेके जा ना मुंबई। मैंने कहा देख तेरी सब भाई बहन है काम करो। तो चलो मजाक कर रहे थे, तो इंडिया में जाओगे, अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, इंडिया में जाओगे जहाँ से ज़्यादा लेके जाओगे, वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो तो ऐसा ऐसा सुनेंगे जो उनको अच्छा अच्छा लगे और जो उनके बलबले मन में चल रहा है ना वो पूरे हो जाएं। ठीक है, लेकिन क्या संदेशा लेके जाओगे यहाँ से, कोई अपने परिवार के मेंबर पूछ ले या कोई आंढ़ी गुआंढ़ी जो आपका नेबर है वो ही पूछ लेगा, यार मैंने भी अपने बच्ची को भेजना है तो क्या करोगे उस, सीधा जे कहोगे वहाँ पर बहुत अच्छा है, वहाँ पर तो बहुत पेड़ों के ना बस डॉलर ही लगे होते हैं, मैं दे ही देखना पक्का कौन है, 50 का है ना 20 का मत तोड़ो। तो क्या स्नेहा उनको देगी?
1: नहीं
0: बस बहुत बढ़िया बढ़िया है,
1: नहीं बढ़िया है पे उसके साथ में संघर्ष भी है, संघर्ष बहुत है, बढ़िया तो है लेकिन संघर्ष बहुत है उसके लिए, और मतलब कोई बच्चा आए पढ़ाई के लिए वो मतलब पूरी ईमानदारी से पूरे लगन से मतलब पढ़ाई करे, और मतलब किसी भी गलत संगत में या किसी भी गलत नशा का चक्कर में ना पड़े, और अगर पूरा ईमानदारी से वो संघर्ष करेगा तो एक दिन अवश्य वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
0: जी माता कुछ कहना चाहोगे? चलो अपने पुत्र को संदेश दे दियो इस रेडियो के माध्यम से, इस रेडियम के माध्यम से आपने पुत्र को संदेश देना चाहोगे?
2: जी
0: कि पहले तो ये बताएंगे बजाया तो तुम्हें बहुत था मैंने। क्या क्या संदेश देना चाहोगे, शायद सुन रहा होगा वो।
2: हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, बेटा ने हमारे लिए इतना किया पहले आपने यहाँ आया, फिर बहुत संघर्ष काटा उसने यहाँ पर आके, उसके बाद माँ बाप के बारे में सोचा बुलाने के लिए।
0: अगर आपके पुत्र पुत्री ने ये कहा कि हम पक्के हो गए, हम वो वापस तो फिर जाएंगे नहीं,
2: नहीं
0: ठीक है, उनकी जिम्मेवारी वहाँ पर बढ़ जाएगी, वहाँ पर उनकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लॉयर होंगे वो राज जैसे, फिर लॉयर करने पड़ेंगे, वो अपने पैसे बनाते रहेंगे उनसे, ठीक है, वो फंस गए। अगर उन्होंने ये कह दिया, दो तीन मिनट है हमारे पास, कि बेबे बापू वो बेच दो यार, पिछला जो कुछ जमीन जमून जायदाद है वो पैसा यहाँ पर ले आओ, क्या करोगे, क्या करोगे जी?
1: एक बच्चा हमारा वहाँ भी है और एक यहाँ है, तो जो भी है इनका जितना हो सकेगा हमारे से हम इनका हेल्प करेंगे।
0: वो कह रहे हैं कि मेरा 50% बेच दो,
1: 50% बच्चा बोलेगा तो बेच देंगे जी,
0: बच्चा बोलेगा बेच दोगे आप?
2: नहीं नहीं, मेरा बेटा ये बड़ा वाला यहाँ आया तो ये बोला था, ये मेरा ऐसी बात नहीं है, बेच देंगे, छोटा भाई है इसका, तो बोला ये आज ये यहाँ पर आया तभी बोल दिया था मम्मी, ये छोटा भाई को दे दूंगा मैं।
0: अपने बच्चे को ये नहीं कहोगे कि जब इतनी मेहनत से जेब बनाया है तो फिर हमारा क्यों बीच में अटैच कर रहे हो, क्या पता कल को कैसा माहौल बन जाए?
2: इसकी मर्जी है, वो देखो आधा तो जो हमारी प्रॉपर्टी है इसमें है ही
0: जी,
2: और जो बेटा बोलेगा वही काम करेंगे।
0: अगर आपका बच्चा कामयाब नहीं हुआ आपके हिसाब से,
2: हाँ,
0: फिर कैसा लगेगा?
2: नहीं तो हमें बच्चा के साथ चलना है,
1: मैं विश्वास है हमारा बच्चा अवश्य कामयाब होगा,
0: मुझे शक है।
2: हाँ।
0: अच्छा, जहाँ के जो इंडिया से लड़के लड़की आते हैं, दो मिनट का समय बचा है, मैं उनको बुरा नहीं कहता, उनकी आजादी या जो मर्जी करें, कभी लड़के लड़की के साथ हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने सपने बुनने लगते हैं, कोई लड़की लड़के के साथ सपने बुनने लगती है, पेरेंट्स कट ऑफ होते हैं उसमें से, ऐसे रिलेशन को आप कैसे स्वीकार करेंगे, है उसमें कोई गारंटी है?
2: हाँ, मुझे गारंटी मेरे बेटा की।
0: अच्छा, बेटे की है, बेटी की नहीं,
2: बहू की नहीं? बहू की भी है।
0: बहू की नहीं है?
2: हाँ, बहू की भी है।
0: मैं तो दोनों की गारंटी लेता। क्या सोचते हो ऐसे रिलेशन, अपने गांव में तो ऐसे बोलना भी मुश्किल हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ अपने वहाँ लिश को लव मैरिज बोलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे मतलब अच्छे परिवार से है तो पीछे अच्छे हुए के माँ बाप ने उनको संस्कार दिए हैं, तो वो बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसमें माँ बाप ने भी उनका मतलब अपने बच्चों को समझना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए
0: जी। धन्यवाद करते हैं जी, समा इजाजत नहीं दे रहा, गलों का होर भी कर सकते हूँ, मैं दसो हूँ तो हम झाका जहा खोलेंगे, हम कहना चलो अद्धा घंटा बोला लें, वो अच्छा पंजाबी हो गया। मैं क्या, अब तो आपका वो जो कहते हैं ना गाँव में भी, अब तो झाका सा खुल गया है कि अब ये तो नहीं कह रहे कि चलो 15 मिनट और लगा लें।
1: नहीं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पंजाबी भाषा भी बहुत अच्छी है, इसके भी मतलब इसमें हम तो चाहते हैं कि और भी इंटरव्यू लंबा चलता रहे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके
0: जी। धन्यवाद जी,
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार
0: जी जी, अगले हफ्ते फिर कोशिश करेंगे, रब्ता बनाएंगे, अगर आज जी ने थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा दे दिया था
1: जी,
0: ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया जी, थोड़ा सारे श्रोतियों का तुम आनंद माणिया प्रोग्राम, थोड़ा चलो मैं एक अद्धा गीत होर भी ला के चले जाना है, बने रहो जी इस प्रोग्राम के नाल, आप खुलियां गल्लां करते हैं, माँ बोली पंजाबी गल्लां करते हैं, अज हरियाणी तो हिंदी भी चली आ, मेरी हिंदी तो मैंने माफ़ी, क्योंकि 6वीं च मैंने हिंदी लगी सी, 10वीं जाके समझ लगी सी, उस तो बाद स्कूल खत्म हो गया, इस करके फिर हम मेरे वास्ती गल वैसे है ही नहीं गी, आ चको गाँव खूबसूरत जी।